0: were stopped, harassed and assaulted by a group of men, with the girl groped and the boy attacked. The incident took place on September 19 between 6:15 and 6:30 p.m. and the video later surfaced on social media. Police say three accused of seven to eight involved have been arrested while others are being traced. An SIT has also been formed to investigate the case, but the incident has now snowballed into a political row. JDU Bihar Chief Umesh Singh Kushwaha described such crimes as isolated incidents and said that the government was sensitive to such cases. He called it chutkut case. He also compared the situation with Bihar before 2005. Now, that remark triggered a sharp response from RJD and Bihar leader of opposition Tejasvi Yadav, who condemned the incident and also questioned the government's response to women's safety in the state. Meanwhile, Bihar Minister Mohammad Zamar Khan has assured that those responsible will face strict action, saying that no culprit will be spared.
1: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकता है. तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई है. साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेकडाउन नोटिसेस जारी किया. 23 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 14-15 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे. साथ ही साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 74 सेक्शन के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे.
2: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था. कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना. आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन.
3: गिरफ्तारी हुई है, जाँच चल रही है, जो उसमें जांच में पाए जाएंगे निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी. आपने देखा होगा तत्काल गिरफ्तारी भी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ निर्देशित किए हैं, कोई होगा वो बचेगा नहीं.
4: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रहेगी. आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही है फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी. ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है.
5: 10th क्लास का बच्चा और बेटी अगर स्कूटी से जा रही है तो बिहार में भाजपा की सरकार में आप देखिए कितना दहशतगर्द है, वहाँ कैसा जुल्म किया जा रहा है, कैसा टॉर्चर किया जा रहा है बच्चियों के साथ, देख सकते हैं आप, खून खौल जाएगा. मैं तो देखा वीडियो, क्या सरकार है, क्या हो रहा है बिहार में. बहुत बोलते थे जंगल राज, हमको तो लगता कि हैवानियत का राज हो गया बिहार में. भाजपा सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री आपसे नहीं संभलेगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आपके नाम पर. आइए झारखंड, हम लोग कितना पीस है, देखिए कैसे चलाया जाता है राज्य, ये सीखे हमारे मुख्यमंत्री जी से.
0: And my colleague Sonal Mehrotra Kapoor spoke with Bihar Minister and Jamui MLA Shreyashi Singh, who condemned the incident but shockingly appeared to justify moral policing. Take a look at this India Today exclusive.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है.
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी. मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां.
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ.
2: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार अटूट भरोसा.
7: यार लोन भूल गया. मैरी
8: सजेस्ट अ गुड बैंक ना.
9: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
7: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
9: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan. There's nothing small about
8: them. Ujjivan, nothing small about us.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
12: सोच बदलो और बैंक भी.

वो संगमरमर का ताजमहल नेहरू जी को कितना अच्छा लगता है, मगर वही बोलते हैं मंदिरों में संगमरमर या मार्बल इतना ज्यादा यूज होता है कि मुझे गुसलखाने की याद आती है, बाथरूम की याद आ रही है। इसका सोर्स है सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 74 इन द ओरिजिनल एडिशन पेज नंबर 181। आप फितरत देखिए, मंदिर में डिप्रेशन, ताजमहल को देख के वाह क्या सुंदर, और मंदिरों के संगमरमर पे बाथरूम याद आता है। यह है असली फितरत। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि संगमरमर के पत्थर से चाहे जितनी अच्छी भी मूर्तियां बना दी जाए, मगर मुझे उसमें से गुसल खाना ही याद आता है, बनारस के लोगों को भले ही बुरा लग रहा हो। हामिद अंसारी साहब ने एक किताब को कोट किया है जो 2019 में लिखी गई है, और बकौल उनके नेहरू जी ये कह रहे हैं कि उनके लिए कम्युनिज्म उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू राष्ट्रवाद। इस बात के लिए मैं हामिद अंसारी जी को बधाई देना चाहूंगा। कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो चुकी है, कम्युनिज्म यानी वामपंथ एक खतरा था, नेहरू ये मानते थे और नेहरू का संदर्भ वो लेके आए। और इससे यह भी साफ हो गया है कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बातों में जो कुछ दिखाई पड़ता है, इसकी कहानी खानदानी है, ये कोई अकेले अभी की बात नहीं है।

0: ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ।
1: आरोप जग्गा सिंह वाले मामले पे लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि लगातार प्रेशराइज कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार ऐसे लोगों को जो कि विसल ब्लोअर्स हैं।
2: हाँ, विसल ब्लोअर जो है उनको कभी भी पार्टी नहीं कहती। 8 पर्चे उसके ऊपर दर्ज है एनडीपीएस, तो विसल ब्लोअर नहीं है वो।
1: विपक्षी पार्टियां लगातार ये केस उठा रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं
2: वो? कुछ वही उठाएंगे ना। इस मामले में तो कोई नहीं बोला उनको, उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में। ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं, इसलिए शाम तक चुप हो जाए।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी सज्जन व्यक्ति हमारे यहां परंपरा क्या है, अगर हम चल रहे हैं एक पगडंडी से चल रहे हैं, एक मार्ग से चल रहे हैं, मार्ग संकरा है, तो पहले हम क्या करते हैं, किसी बुजुर्ग को, किसी महिला को, या कोई फिर दिव्यांग हो या कुछ इस प्रकार अपने से उम्र में बड़ा हो, उनको कहते हैं कि पहले आप, कहीं बैठने की भी व्यवस्था हो तो हम क्या, हमारा संस्कार कहता है पहले आप, यानी मैं भले ही इंतजार कर लूं लेकिन आप उम्र में बड़े

हैं, मेरा संस्कार कहता है कि मैं पहले आपको सम्मान दूं। यह हमारा संस्कार है, यह हमारे जीवन की मर्यादा है। लेकिन जिन लोगों ने इन मर्यादाओं को नहीं सीखा है, जिन लोगों के मन में ये संस्कार नहीं है, जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।

वो संगमरमर का ताजमहल नेहरू जी को कितना अच्छा लगता है, मगर वही बोलते हैं मंदिरों में संगमरमर या मार्बल इतना ज्यादा यूज होता है कि मुझे गुसलखाने की याद आती है, बाथरूम की याद आ रही है। इसका सोर्स है सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 74 इन द ओरिजिनल एडिशन पेज नंबर 181। आप फितरत देखिए, मंदिर में डिप्रेशन, ताजमहल को देख के वाह क्या सुंदर, और मंदिरों के संगमरमर पे बाथरूम याद आता है। यह है असली फितरत। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि संगमरमर के पत्थर से चाहे जितनी अच्छी भी मूर्तियां बना दी जाएं, मगर मुझे उसमें से गुसल खाना ही याद आता है, बनारस के लोगों को भले ही बुरा लग रहा हो।

हामिद अंसारी साहब ने एक किताब को कोट किया है जो 2019 में लिखी गई है, और बकौल उनके नेहरू जी ये कह रहे हैं कि उनके लिए कम्युनिज्म उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू राष्ट्रवाद। इस बात के लिए मैं हामिद अंसारी जी को बधाई देना चाहूंगा। कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। कम्युनिज्म यानी वामपंथ एक खतरा था, नेहरू ये मानते थे, और नेहरू का संदर्भ वो लेके आए, और इससे यह भी साफ हो गया है कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बातों में जो कुछ दिखाई पड़ता है, इसकी कहानी खानदानी है, ये कोई अकेले अभी की बात नहीं है।

0: All right, in this special telecast, good morning and welcome. I'm Pooja Shali. I have news coming in from Central Delhi now. The latest that we have in this top crime story of the day. Cops have arrested alleged rapist Asif. An encounter, according to police, has taken place. And there's a lot of outrage. The outrage is over the rape of a minor. And that has led, and because it's in South Delhi, this is Kalkaji that we are talking about. It has led to a lot of anger and outrage as well. According to the police, the name of the accused was Asif, accused of raping a minor girl in Kalkaji. Police has given out a statement. Southeast District, Delhi Police. I quote it here. Minor girl allegedly sexually assaulted at the Aastha Kunj Park. One accused injured during the police encounter. A PCR call was made regarding the alleged rape of a 17-year-old minor girl by three men. And information was received to the PCR. This happened at about 8:45 p.m. late last night. On receipt of the information, SHO of the police station in Amar Colony, along with staff, reached the area. The victim was found along with her male friend. As per the victim's statement, now here's why they could corroborate what happened. She and her friend had visited the Kalkaji Mandir for darshan, subsequently entered the Aastha Kunj Park. For those who may not know, if I can help you explain, right opposite, and Kalkaji Mandir is a massive area, and right across that premises is even a bigger park that is, of course, accessible to public. Three persons allegedly posed as policemen and then indulged in this horrific crime. I want to immediately go across to Himanshu Mishra. He's tracking all the latest on that. Himanshu, thoda explain kariye, because ye bahut hi busy area hai, populated area hai. Itni aasani se kaise ye jo teen aadmi the managed to indulge in this horrific crime?
1: देखिए, ये पूरी भीड़ है, चाहे वो मंदिर से निकलती हुई भीड़ है या फिर लोटस टेम्पल तक जो आती है भीड़, वो बाहर होते हैं. लेकिन ये देखिए, ये आस्था कुंज पार्क है, ये दिन में ही आप देखिए काफी बड़ा एरिया है और इसमें कई ऐसी जगह है जो सुनसान टाइप की होती है. और अगर 7:30 बजे जब अंधेरा हो जाता है तो इसमें और ऐसी कुछ जगह है, कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं जो लाइट होने के बावजूद भी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं पहुंचती है. तो ऐसे में जब वो लड़कियां आई, हालांकि वो गेट नंबर 7 से एंट्री करके बहुत दूर तक नहीं आई, लेकिन जब तीनों पहुंचे तो उन्होंने खुद को पुलिस वाला बताया और लड़कियां डर गई. उसके बाद एक जो विक्टिम है उसको अलग लेके जाते हैं. वहां पर एक ने रिवॉल्व पिस्टल निकाला, जो अभी आपने देखा मौके पर पुलिस ने बरामद की है, जिससे पुलिस टीम पर गोली चलाई गई. वो पिस्टल निकालता है, साथ में एक नाइफ निकालता है, उस पीड़िता को धमकाया जाता है और उसके बाद इसी पार्क में उसके साथ तीनों ने बारी बारी गलत हरकत को अंजाम दिया, जिसके बाद वो भाग जाते हैं. लेकिन पुलिस को जब कॉल की गई, पुलिस की टीम जब पहुंची तो पुलिस ने दो तरीके से काम किया, क्योंकि आरोप पुलिस को इस बात की आशंका थी कि वो बाहर ना भागे. तो ऐसे में पुलिस ने एक तो पीड़िता से पूरा डिस्क्रिप्शन लिया तीनों का, उसके बाद चूंकि उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था कि वो पुलिस वाले हैं, तो पुलिस को ये लगा कि ये जरूर आसपास के होंगे और अक्सर इस पार्क में आते होंगे. तो उसके बाद पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज, न सिर्फ कल शाम का बल्कि इसके पहले के भी फुटेज निकाले और जल्द से जल्द पीड़िता से उसको आइडेंटिफाई करवाया. एक बार आइडेंटिफाई होते ही पुलिस ने उनको ट्रैप करना शुरू किया और सुबह के वक्त 6 बजे के आसपास पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि अपने किसी जानकार से मिलने जाने वाला है आसिफ, ताकि उससे कुछ मदद ले सके और फिर वो दिल्ली से बाहर भाग सके, जैसी कि पुलिस को पहले ही आशंका है. और पुलिस ने जब उसे आइडेंटिफाई किया, उसको रुकने का इशारा किया, तो देखिए पुलिस वो जो पिस्टल जिसे कल उसने पीड़िता को धमकाया था उसी से गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की, जवाबी कार्रवाई में इंजर्ड हुआ है. अब जो बाकी के दो आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, उनके लिए जगह जगह रेड की जा रही है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी.
0: वेल डन टू द दिल्ली पुलिस, बिकॉज दिस कुड हैव बीन अ ब्लाइंड केस एज वेल, एंड दे मैनेज्ड टू नैब एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री. बट आई होप दैट द रिमेनिंग टू आर ऑल्सो अरेस्टेड वेरी सून, बिकॉज दिस रिमेंबर इज ऑल्सो अबाउट द पुलिस. दे यूज द आइडेंटिटी ऑफ पुलिसमैन टू देन सेक्सुअली असॉल्ट दिस यंग वुमन हु वॉज विद अ मेल फ्रेंड. Here's what Himanshu Mishra sent us from that area to help you understand about why these men thought that they would get away with this crime. Here.
1: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है, इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है, जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद पास के हॉस्पिटल भेजा है। सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे के आसपास ये एनकाउंटर हुआ। आप देख सकते हैं मौके पर फॉरेंसिक टीम, पुलिस की वो टीम जो एनकाउंटर में शामिल थी, सभी लोग यहां पर मौजूद है। इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है और यहां से तमाम सबूत जुटाए जा।
0: This is one story that I'm not going to let go of. India Today will constantly track its coverage on the story of what unfolded in Bihar. The video is viral on social media. Everyone's outraging about it. But what happens to the one who did it? The man who covered his face with this orange scarf. He knew he was being recorded and yet he had the audacity to do what he did because he believed he'll get away. And I'm sorry to tell you that this man is still on the run. But I would want to put his image very clearly on our screens. I wish that we had the full image of his face while we hide the identity of the victim, of course, and conceal it for their safety and security. But this man's identity, at least with the eyes, that can be the lead for police. If there is any information that you have about this man, contact the near police station. Camera did capture this attacker's horrific action. And what action are we talking about? Of course, while we cannot show you, given the guidelines, the fact that he knew what he was doing and that it was a minor age girl and a boy, he grabs the private parts of this young girl, lifts her and intends to sexually assault her. Hats off to that another minor age boy with her who at least would stay around and try to stop this man. But think of the psychological trauma. This was not moral policing. This was not trying to stop the couple trying to set any moral standards. The intention of these men, especially this man, was to sexually assault. He was clearly, from what we gathered from this video, was the most brutal with his intentions. Lifting the girl on camera, grabbing her private parts and constantly going for her. And the fact that he covered his face with an orange scarf clearly showed and reflected that he knew that his face shouldn't be seen, but that shouldn't stop him from doing what he likes to do. I hope Bihar police will nab him at the soonest. Manhunt is on. The details we'll keep tracking. But it's been 3 days since this video has gone viral. The main accused, the one who molested, groped, lifted the girl, a minor age girl, possibly school going. This man is still at large. The orange scarf that he's worn while he was committing the assault, still at large. Incident involved two students, I'm told, who were assaulted by a mob. Because somehow this mob believed that these two young people shouldn't be out and about. And if they are out and about late into the evening, the men have every right to grope her and lift her from the private parts, assault her and do much worse if the girl and the boy hadn't been able to get away from them. But it shocked the entire country. And it's not just about Bihar. While, of course, this is state-specific here, it raises a bigger question. The audacity of some evil minds to think they can indulge in such actions in public. Janata Dal United Bihar chief Umesh Singh Kushwaha has, though, given out a statement which is also strange, saying that these are crimes that are isolated, sporadic incidents. The government was sensitive to such cases. Compared to the situation to pre-2005 Bihar, where the situation was much worse. Sure, the situation could have been much worse in Bihar, and we have incidents like that earlier perhaps in a worse situation, but that is no justification to say that this was simply an isolated incident. RJD leader Tejaswi Yadav has condemned the incident, questioning government's response to women's safety. Bihar Minister Mohammad Zama Khan has assured those responsible will face strict action, saying no culprit will be spared.
2: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकता है. तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई है. साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेकडाउन नोटिसेस जारी किया. 23 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 14-15 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे. साथ ही साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 74 सेक्शन के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे.
3: बिहार में महिलाएं सुरक्षित है. जरा अपने एलआई उनके जो लालू प्रसाद जी हैं उनसे पूछे कि उनके शासन काल में सूर्यास्त के बाद कोई महिला घर से निकलना नहीं चाहती थी.
4: छिटछाप कोई छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं. लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था. कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे. ऐसा बिहार था ना? आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन.
5: गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है. जो उसमें जांच में पाए जाएंगे निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी. आपने देखा होगा तत्काल गिरफ्तारी भी हुई है. प्रशासन लगा हुआ है. हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से निर्देशित किए हैं कोई होगा वो बचेगा नहीं.
6: बहुत ही दुखद घटना है. हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई. लेकिन सरकार को कोई शर्म और लाज नहीं रहेगी. आप देखिएगा यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही है फ्री होकर के. और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी. ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है.
7: 10th क्लास का बच्चा और बेटी अगर स्कूटी से जा रही है तो बिहार में भाजपा की सरकार में आप देखिए कितना दहशतगर्द है. वहाँ कैसा जुल्म किया जा रहा है, कैसा टॉर्चर किया जा रहा है बच्चियों के साथ. देख सकते हैं आप, खून खौल जाएगा. मैं तो देखा वीडियो. क्या सरकार है, क्या हो रहा है बिहार में? बहुत बोलते थे जंगल राज, हमको तो लगता है कि हैवानियत का राज हो गया बिहार में. भाजपा सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस्तीफा दे. मुख्यमंत्री आपसे नहीं संभलेगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आपके नाम पर. आइए झारखंड, हम लोग कितना पीस है, देखिए कैसे चलाया जाता है राज्य, ये सीखे हमारे मुख्यमंत्री जी से.
0: The expectations are high from the Jamui MLA and Bihar minister, who's a woman, Shreyasi Singh. In fact, India Today, Sonal Mehrotra Kapoor spoke to Shreyasi. But here's what the MLA minister said.
8: We are now getting reports that the accused in this case, the molesters in this case, the criminals in this case were also minors. Do we have any idea if they come from a particular section, if they are of a particular gang or they represent a particular organization? Do we have any such details?
9: I don't want to put these people under any sort of category. Antisocial elements are exactly what they are, unfortunately, and they live in this society. So just, I don't know where they get this power to think that they are moral. And moral policing can be on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion. But the way that they mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable, and I don't want really.
8: I'm sorry, Ms. Singh. Are you saying moral policing can be done in a respectable, decent manner? What do you mean by that?
9: Well, I say that you can have an opinion about how somebody chooses to live their life and what they want to do with it. And maybe there is a better way to do it. But the way that they've treated is absolutely not tolerable, right? Because the way the videos that have come are shocking. How can you treat a boy and girl of the society that you are living in? They must have known that this boy and girl are kids from Jammu. I can't fathom the fact that they were treated this badly by the people of their own community, the people of the community who are they apparently living with.
0: This could be a big test for Chief Minister Simraj Chaudhary, who was last year, remember, Nitish's deputy. And then he had asserted that he would resign if anyone would dare to commit a crime on his watch. He is the CM, he is the Home Minister of Bihar. But here's what, at the India Today Aaj Tak Conclave, then he had said this.
10: Jo sabse bada dar tha Bihar mein, main bol raha hu, Bihar ka up mukhyamantri hu sarkar mein. आज यदि दुश्मन आपका नहीं है श्वेता जी तो रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा. किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा.
0: सो इट्स नॉट लुकिंग गुड, स्पेशली फॉर वेदर इट्स बिहार और द नेशनल कैपिटल दिल्ली. अ 6-year-old चाइल्ड अलेजेडली ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्टेड, अ 17-year-old गर्ल इज गैंग रेप्ड. All of this while the police is taking into account. But what we see is a bigger question. Remember, this is not about cases of sexual assault. It is about what these men are being taught at home as boys. What are they watching and why do they think that they can assault, gang rape and get away even in 2026? I'm now taking you to Gwalior because that is where the incident of a schoolgirl allegedly assaulted has come. And this is while she was on route for coaching classes. Two youth on a motorcycle attempted to sexually assault her. That's the video on your screen. Look what happens. Two young girls just going on and about to their coaching class. We have been at that age and this should be last on your mind that somebody on a motorbike driving alongside would come and indulge in behavior that is clearly is insulting, if nothing else. The police swung into action after the video went viral on social media. The police have identified these two accused and I want to name them. Yogesh Rawat, Yuvraj Rawat, both residents of Lohagadi village. And we are told that he's been arrested now by the police. We don't have information if they were known to each other, what exactly happened. But it happened near a school premises and the student was heading to coaching classes when her path was blocked by these two young men, boys. We'll try and get more details on that. But only thankfully, at least because it got caught on CCTV, we know what happened. I'm joined by Ravish Pal Singh for the latest. Ravish, hame thoda details dijiye. Kya hua? Kya ek dusre ko jante the? Kaun log the? Ya aise hi raah chalte kisi bhi ladki ko aap molest karke nikal jayenge?
11: बिल्कुल, और यही पूरा बड़ा सवाल भी उठ करके सामने आया है कि देखिए ये घटना जब हुई है तो उस वक्त अगर आप देखें तो ये दिन दहाड़े ये घटना हुई, रोड चल रही है, वहां पे वो दो लड़कियां अपनी कोचिंग जा रही है, आप दोनों आपस में बात कर रही हैं और अचानक से ये दो बाइक सवार लड़के आते हैं और ना केवल उनका छेड़छाड़ करते हैं बल्कि पूरी तरीके से अगर आप देखें उसमें वीडियो में सीसीटीवी में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इमीडिएट करने की कोशिश भी हो रही है वहां पे लड़कियों को. और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले जो बाइक नंबर है उसे ट्रेस किया और जो एक अक्यूज है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा अक्यूज अभी अब फॉन्डिंग है. लेकिन इस घटना ने क्या सवाल खड़े किए, सवाल ये खड़े किए कि ग्वालियर जैसा जो शहर है जो कि मध्य प्रदेश के एक बड़े शहरों में शुमार होता है, और वहां पर दिन दहाड़े रहा चलती लड़कियों के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ होती है। आमतौर पर ग्वालियर या फिर हम कहें तो बहुत कम ऐसी खबरें सामने आती है। ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहाँ काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो महिलाओं की इज्जत की जाती है और काफी ज्यादा वहाँ पे पूछा भी जाता है, लेकिन वहां पर इस तरीके की घटना का सामने आना, दिन दहाड़े सड़क चल रही और भी लोग वहां से गुजर रहे हैं, देखिए किसी ने उस वक्त रोकने की कोशिश नहीं की, वो दोनों बाइक सवार जो है वहां से इस घटना को अंजाम देके आसानी से फरार भी हो जाते हैं, इसके सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस जो है वो तुरंत एक्शन में आती है जब सीसीटीवी फुटेज उसके हाथ में लगता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो क्या इतनी आसानी से इन पर एक्शन हो पाता? जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो अपनी आंखों से देख रहे थे कि जो बाइक सवार इन युवतियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन्होंने इस पर समय लेते वहां पे इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो दोनों बच्चियां हैं जो कि अपनी कोचिंग जा रही
0: थी, रविश क्विक क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो, आई सी देम स्लैपिंग वन ऑफ द गर्ल्स एंड इंडल्जिंग इन बैड बिहेवियर, ये कोई कॉन्फर्मेशन है? अगर शायद मैं नहीं समझ पाया जो आप मुझे बता रहे थे कि क्या ये पुरानी जान पहचान थी, किसी तरह का एक रिवेंज लिया जा रहा था?
11: देखिए लड़का जो है बताया जा रहा है कि जो सोचते समय बता रहे हैं कि वो लड़की की पहचान है, लेकिन वो इतनी इमीडिएट पहचान में या क्लोज उनकी आइडेंटिटी का नहीं था कि वो उससे इस तरीके से सड़क पर रुक करके बात करे। जो पुलिस बता रही है वो कि पिछले कई दिनों से वो लड़की को रोक करके बात करने की कोशिश कर रहा था, तो मुख्य आरोपी है जिसने चाटा मारा है, और इसीलिए पुलिस ने काफी सख्त धाराएं भी लगाई है। लेकिन ये जो दोनों बच्चियां हैं बताया जा रहा है कि उस दिन के बाद से कोचिंग नहीं जा रही है, और इसीलिए इस घटना ने
0: और इट्स अंडरस्टैंडेबल रवीश, नो गर्ल वांट्स टू बी एट और इन अ सिचुएशन लाइक दिस वेयर शी इज कांस्टेंटली एट रिस्क, बट आई अप्रिशिएट द पुलिस टू बी एबल टू नैब दीज यंग मेन, एंड आई होप नॉट ओनली देयर काउंसिल बट given the punishment that's deserved. Ravish, thank you very much. And this stalking behavior, the fact that some of these boys cannot take no from a girl, also raises a lot of questions that our society needs to work on. Thank you very much for now. It is the festive season across India. Ganesh Chaturthi is over, but it's only the beginning of the next few months. For example, the Garba Dandiya dance that we all know is much loved and is seen with the participation of several communities, youngsters, and of course, the prayer ceremonies that follow. But there's an advertisement in Mumbai that has gone viral and has turned controversial. Rent a Garba partner. But it's become a controversy. So if you don't have a partner to take with you for Garba, you can rent one. Not have one, ask your friend, but you can rent a partner. BJP MLA Sanjay Upadhyay is seeking police investigation into this rent a Garba partner advertisement. The MLA is alleging that these are paid Garba partners offered between 1 to 5,000 rupees, but seeking investigation about what is this really? What is happening here? How do you rent a partner like this in an event? MLA seeking legal action if any law violation is found and over alleged fraud or misconduct that happens. MLA is urging police to take preventive steps and ensure women's safety. But this is also as much about, remember in the past few years, we have seen how even the Garba event has turned into a certain controversy in itself about who's participating, are there identities that are not being revealed. Dipesh Tripathi is joining me for the latest. Dipesh, tell us more about this advertisement. Is this from a company, a group? What's happening? Why is it controversial?
12: BJP MLA from the Borivali constituency, Sanjay Upadhyay, raised a certain questions, and it's a new kind of trend which we are witnessing right now before the Navratri. You can rent a partner, you can take a partner on a rent, and that depends, and price varies from 1,000 to 5,000, varies and depends on your requirement, that how much time for you need a partner for the Garba, and also you want to learn a dance steps from him or do certain things in the Garba during the festive season. So Sanjay Upadhyay raised a certain question. He wrote a letter to the Mumbai Police Commissioner asking him to investigate this whole plot, because Sanjay Upadhyay claimed that this might be a fraud and this might be could lead to a cheating, whether it is a financial cheating or it can be a cheating to a woman, or it can also be discriminate a modesty of the woman. So Sanjay Upadhyay raised a certain serious issues regarding this rent-a-partner-garba business module, and he asked the Mumbai police to investigate this module and also to check that who are the owners of this rent-a-garba-partner business and who are behind this.
0: So planning. India Today has accessed, as has been sent by Mumbai Bureau, that Dipesh is telling us about. That is the advertisement on your screens, but there is this lack of clarity that is being alleged here. How do you rent a partner for an event like this, which any day right now, remember in the past few years, have faced a certain scrutiny. Who is coming in, who's participating, and conservatives are saying that this is actually about a puja ceremony, it's about the deity and Hindu god, and it should be restricted to a community. Now, this advertisement, therefore, is raising question of safety, security, and who's being allowed to come in simply via a rent. So, Dipesh, tell us more about that. Any statement that has come in as clarification from whichever group this is, and they have put an advertisement on that?
12: Yes, we are still trying to locate that who are the owners or who are the founders of this group and who are operating this group and this kind of business module before the Navaratri. Because we have seen that lot of political allegations we have seen on the Navaratri from the both ruling as well as opposition parties will participate, while which community will participate in Garba and which will not. And we have seen a lot of statements from both the sides. And after that, this kind of business module came into the light. This raises a certain questions according to the BJP MLA Sanjay Upadhyay. And we are still trying to look at
0: down, but also the lack of clarity is interesting. What group is this? Who's organizing? What's happening? And could it hamper safety and security, especially of women in this case? We'll be tracking that. But staying with Mumbai, it is the IIT Bombay student death case that has definitely raised a lot of questions. The fact that a young student died by suicide, and it has led to action against one of the senior professors. Sahil Wakode's family, though, is demanding a full inquiry and even a CBI probe, while faculty members are backing Professor Surya Narayan Dula. Family on one side. So we're going to put out both the stories of what happened as the investigation is on right now. Sahil's family has questioned what happened inside the examination hall and that there was allegedly caste-based harassment, demanding that the responsibility be fixed after a full probe. But the IIT Bombay Faculty Forum and many students are rallying behind this Professor Dula, saying he followed what is a very genuine, general prescribed procedure of the institute, that there is, if an alleged examination malpractice, then there is a complaint filed and then an action is taken. So this forum, signed by some of the faculty members, is objecting to what it calls its false and misleading claims against the senior professor. Support has come even from the fellow IIT institutes, IIT Madras, IIT Delhi faculty. There are several academicians who are backing the professors, saying that there should be a fair examination, and that is what the professor was indulging in. Also, how can conclusions be drawn already? But what has happened meanwhile is IIT Bombay has started to replace ceiling fans in the hostel room. Instead, wall-mounted fans are going to be kept. The first batch already has arrived on the campus. That's the wall-mounted fans. And that's because the student was found hanging in the room and there's a fear if other ceiling fans could be used. And that this is a planned hostel renovation. Now, the IIT Bombay administration saying this has nothing to do with the recent student suicide case. But it's anyone guess what exactly is happening.
13: इतने होनहार बच्चों को अगर समझो सुसाइड करने में अगर ये प्रशासन ये कर लेता है तो इसके बारे में पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए. जब साहिल सुसाइड करने के बाद में हमें पता चला कि वो मोबाइल यूज कर रहा था, तो आपकी एग्जामिनेशन हॉल में क्या चल रहा था, क्यों किया, कैसा किया, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है. और ये प्रोफेसर को सस्पेंड करने के बाद में इतने बड़ी बात हो गई. इस प्रशासन में ये साहिल के सुसाइड मामले में जितने भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए.
14: सोमवार को उसने इस कास्ट निजम के बारे में बताया था पापा को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो पापा बोले कि बेटा तुम पढ़ाई में ध्यान दो, ये बातें हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती, तुम अपने भविष्य पर ध्यान दो, घटना के बारे में सीबीआई चौकसी होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उन सभी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए सर, तभी हमारे साहिल को और उन सब बच्चों को न्याय मिलेगा सर.
0: So this clearly is reflective of the fact that now there's a debate raging. Was the professor not supposed to take action in this case if there was a malpractice that was found? And is this also about society pressure on students, parental pressure, family pressure? Remember, IIT Bombay, even today in 2026, is one of the most prestigious institutions of the country. To even be able to get into the institute is a huge achievement in itself. But when you take a course like that, like he was in, which was of engineering, it does bring in its share of whether it is, remember, difficult work, studies that involve a lot of pressure in itself. Should there have been counselling that should have come to him from all sides so we could have saved a life? Dipesh Tripathi is joining me. Dipesh, what is the family saying now? And I see that while there are protests against the professor, there's also support pouring in for him. And why is that?
12: Pooja, yes, definitely we are witnessing the both. First, the answer of your question is that the family is saying

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कॉपी किताब ना करे गए तो देख
1: मंडी पर
2: भैया हमारे मोबाइल गिर गए हमारे मोबाइल लग गए
1: ठीक तो मोबाइल लग जाते अरे किसी को
3: हटा
2: जाओ
0: कॉपी
1: किताब ना करे गए मंडी पर
2: भैया हमारे मोबाइल गिर गए हमारे मोबाइल लग गए
1: ठीक तो मोबाइल लग जाते अरे किसी को
3: हटा
2: जाओ
0: कॉपी
1: किताब ना करे गए मंडी पर
2: भैया हमारे मोबाइल गिर गए हमारे मोबाइल लग गए
1: ठीक तो मोबाइल लग जाते अरे किसी को
3: हटा
2: जाओ
0: कॉपी
1: किताब ना करे गए
4: जॉइनिंग मी फॉर द लेटेस्ट ऑन दैट शशि आप कुछ ही देर पहले हमें बोल रहे थे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि नंदन यादव को कहीं तो लीड मिला है पुलिस को और पकड़ लिया गया अभी आप क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं और पुलिस कब इसको ऑफिशियल करने के प्लान में है
5: देखिए पूजा सबसे अहम जानकारी ये कि नंदन यादव का एनकाउंटर पुलिस ने किया है उसके पैर में गोली लगी है और बिहार पुलिस के ऑफिसियल्स ने जो हमारी बातचीत हुई है फोन पे इसको कंफर्म भी किया है जमुई पुलिस इस मामले में ऑफिशियल कंफर्मेशन करेगी हो सकता है जब ये पूरा मामला कम ठंडा पड़े तब या फिर आगे जो अपडेट पुलिस देना चाहे जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसमें नंदन यादव के पैर में गोली लगी है उसको पुलिस अस्पताल लेके गई है अभी उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है ये हम नहीं बता सकते हैं। एक और बात, एक दूसरे आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी की सूचना है। हरेराम यादव भी इस घटना में संलिप्त बताया जा रहा है और हरेराम यादव के पैर टूटने की जानकारी है। किन परिस्थितियों में क्यों भाग रहा था पुलिस से, किन परिस्थितियों में जब अरेस्टिंग हुई तब उसका पैर टूटा है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे अहम जानकारी जो नंदन यादव जिस शख्स की हम चर्चा पूजा थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उस नंदन यादव की गिरफ्तारी जो हुई है उस दौरान जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी है, जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई हैं। पुलिस ये एनकाउंटर हुआ है और इसमें ही नंदन यादव के पैर में गोली लगी है और फिलहाल उसको पुलिस अस्पताल में इलाज के लिए लेकर के गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, बड़ी सफलता भी कह लीजिए जमुई पुलिस के लिहाज से, बिहार पुलिस की तरफ से जो SIT गठित की गई उसके तरफ से, और जो मुख्य आरोपी इस पूरे घटनाक्रम का रहा वो इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है। तो ये एक अपने आप में बड़ा अपडेट है। पूजा
4: आशाशी हमारे साथ बने रही है। सो द मैन ऑन योर स्क्रीन हैज नाउ बीन अरेस्टेड, देयर हैज बीन एन एनकाउंटर, हैज बीन शॉट इन द लेग, बट ऑल्सो इट विल बी अ रिमाइंडर अबाउट द फैक्ट दैट दे कांट गेट अवे। शशि भूषण हमें क्विकली ये बताइए कि अब क्या प्रोसेस रहता है इसमें, जो अब अरेस्ट हुआ है इसके बाद क्या ये सिर्फ यही है जिनके अरेस्ट हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, या और भी जो है अक्यूज्ड और सस्पेक्ट इस केस में क्या उनकी भी अरेस्ट हुई है अभी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नहीं तीन चार लोग तो दिख रहे थे।
5: देखिए पूजा अभी तक जो जानकारी आ रही है,
4: गो अहेड शशि भूषण, गो अहेड प्लीज।
5: मैं बता रहा था, थोड़ी आवाज आपकी मिल नहीं रही थी, मैं ये बता रहा था कि तीन लोगों की गिरफ्तारी कल हुई जो तीनों नाबालिग थे, आज दो लोगों की गिरफ्तारी की सूचना आ रही है। जो हायर पुलिस ऑफिसियल हैं बिहार पुलिस के उन्होंने इसको एक तरह से कंफर्म किया है। आधिकारिक वर्जन या आधिकारिक जानकारी कैसे एनकाउंटर हुआ, कहां से अरेस्टिंग हुई, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमको करना होगा। लेकिन हाँ, जो बड़ी खबर है वो ये कि नंदन यादव जो मुख्य आरोपी रहा इस जमुई कांड के अंदर, जिसको हमने वीडियोज में देखा पीड़िता के साथ वो जिस तरह का बर्ताव कर रहा था, बार बार जो घटना को अंजाम दे रहा था, जिस तरह से उसके बॉडी पार्ट्स को वो टच कर रहा था, वो नंदन यादव उसका एनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी एक अहम जानकारी है। और दूसरी जानकारी हरेराम यादव को लेकर के, तो जो 7 से 8 की संख्या में पुलिस ने कल आधिकारिक तौर पर बताया था कि उनको आइडेंटिफाई किया गया है जो ये लोग शामिल थे इस घटनाक्रम में। उसमें से अब पांच को तो पुलिस अपने ट्रैक पे ले चुकी है। नंदन यादव की का जो एनकाउंटर हुआ उसमें पैर में उसको गोली लगने की सूचना है, क्या परिस्थितियां हैं, उसकी सेहत कैसी है, ये जानकारी अब तक नहीं निकल के आई है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर में ऑफिशियल्स इसकी जानकारी देंगे। जी
4: शशि, क्या ये डिटेल्स हैं कि कैसे अरेस्ट हुआ, कैसे मिला? बिकॉज ये ही वॉज एन अब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड, ये रन अवे, ही रियलाइज दैट द वीडियो इज गॉन वायरल, और अब इनकी जो फोटोग्राफ है ये हर तरफ चलेगी, इंडिया टुडे पे पूरे दिन हम ये चलाएंगे, सो दैट एवरीवन नोज दैट ही इज दैट मैन बिहाइंड दैट स्कार्फ। बट कुछ इस पे डिटेल अभी मिल पाई है आपको?
5: पूजा, देखिए जो पहली एक जानकारी मिली है जो अनऑफिशियल है, अभी उसको थोड़ा हम कंफर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि नंदन यादव जो बालू का कारोबार होता है बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे अलग अलग जिलों में, उसमें जमुई के अंदर भी बालू का कारोबार होता है, तो ये बालू घाट बालू कारोबार से जुड़ा हुआ शख्स बताया जाता है। संभव है कि हरिराम यादव से भी शायद इसका इसी संदर्भ में कनेक्शन रहा हो। बिहार में एक चीज जो बहुत स्पष्ट है, जो हम पहले से बताते रहे हैं, कि एक तो जो बालू का कारोबार करने वाला सिंडिकेट है उसको एक माफिया के तर्ज पे, हम नहीं करें मतलब सरकार में जो बैठे मंत्री हैं उन्होंने तक कहा है कि बालू माफिया बिहार में बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है, तो अगर वो वहां से कनेक्टेड है नंदन यादव तो अपने आप में समझिए कि उसका हो सकता है कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा हो या उस तरह की चीजें सामने आगे निकल के आएंगी, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे अहम है, इस पूरे घटनाक्रम में जिन नाबालिग बच्चों के साथ मिलकर के नंदन यादव ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसमें सबसे अहम कड़ी अगर नंदन यादव है तो ये समझ लीजिए कि बाकी के जो अन्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, संभव है कि पुलिस उन तक जल्द पहुंच जाएगी। पूजा,
4: तो अभी जो है इसकी डिटेल्स नहीं है, मैं आपसे थोड़ा डिटेल लेना चाहूंगी शशि भूषण। हम मान के चले दैट ये ही इज वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड इन द केस, आई वुड वेट फॉर एन ऑफिशियल क्लैरिटी इफ ही इज द मैन इन द मास्क और वॉज ही वन ऑफ द अदर अक्यूज्ड, बिकॉज वो क्लैरिटी भी अगर पुलिस से ही आए तो बेटर रहेगा। सो व्हाट आई विल मेंटेन राइट नाउ इज फ्रॉम आवर सोर्सेज कंफर्मिंग वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड, shot in the encounter on the leg, and later we'll wait of course for clarity coming in from the Jamui police. But kitna mushkil bhi raha hoga Shashi Bhushan, kyunki video ekdam viral ho gaya tha, to in ladkon ko ye to samajh aa gaya hoga ki baat phail gayi hai, jo inko mazay mein lag raha tha ye kar rahe hain, ab wo baat serious ho gayi hai, to kya isme और भी इन्होंने कोई डिटेंशन किए हैं, कहीं किसी और से बातचीत की, परिवार को बातचीत की? और मैं एक और बात समझना चाह रही हूँ, आई होप दैट द गर्ल एंड द बॉय आर सेफ। शशि भूषण, क्या उनको किसी तरह की काउंसलिंग, उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जमुई जैसे एरिया में इस लड़की पर भी अब बहुत प्रेशर बना होगा, क्योंकि उनका चेहरा दिख रहा है।
5: देखिए मुश्किल तो बहुत होगा उस पीड़िता के लिए भी और साथ में उसका जो साथी रहा उसके लिए भी। एक जानकारी, चूंकि आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जानकारी हम तक है उसके मुताबिक पीड़िता जो है वो लोकल लेवल पे उसको कहीं ना कहीं काउंसलिंग उसकी साइड कराई जा रही है। जो पीड़ित छात्र है जो उसका साथी रहा वो इस वक्त जमुई में नहीं है, जमुई से बाहर है, तो ये जानकारी हम तक पहुंची है। पूजा, रही बात इन लड़कों ने जिस कृत्य को अंजाम दिया, मतलब जो आरोपी रहे इस पूरे मामले में, देखिए एक बात कही जाती है कि अपराधी खुद अपने अपराध अपने गुनाह का सबूत छोड़ करके जाते हैं। एक सुनसान घटना पे एक नाबालिग लड़के और लड़की के साथ जिस तरह का बर्ताव किया इन लोगों ने, इन आरोपियों ने, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, ऐसा नहीं था कि वो छात्र और छात्रा इस परिस्थिति में थे कि वो इन आरोपियों का वीडियो बना लेते। जो इस कुकृत्य को अंजाम दे रहे थे उन्होंने ही वीडियो बनाया, और जो वीडियो बाद में वायरल हुआ, 19 तारीख की घटना थी, 19 तारीख की शाम।
4: शशि, स्टे ऑन विद मी, बिहार'स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर स्पीकिंग, लेट्स लिसन इन टू हिम।
6: आपने सरकार की भी मदद की है, दोषियों के पहचान में भी मदद की है, और ये इतना घृणित अपराध है कि जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और आपने अभी तक देखा है कि सरकार ने इस मामले में कितनी मुस्तैदी से और सख्ती से काम किया है कि पहले ही क्षण से पॉक्सो एक्ट लगा के जिसमें सबसे कठोरतम सजा का प्रावधान है वो एक्ट के तहत केस दर्ज करके जो अपराधी हैं और अपराधी भी जो भी अलग अलग किस्म से जिनका इस अपराध में सहयोग रहा है, जो घटना करने वाले हैं, जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो उसको वायरल करने वाले हैं, सभी की पहचान की जा रही है और सभी को सख्त प्रावधानों के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी।
7: लेकिन सर इस सवाल
6: पुलिस ने नहीं, वो तो अब आप लोग के यहाँ क्या चल रहा है उसको हम नहीं जानते। गोली मारने की बात जब होगी तो अगर अपराधी कुछ इस तरह का कृत्य करेगा तो गोली मारने की बात की सूचना नहीं है।
7: एमएलसी चुनाव की घोषणा हो गई है
6: और यह घोषणा प्रत्याशित है या प्रत्याशित थी, होने ही वाली थी। आपको इस घोषणा के मद्देनजर हम इतना जरूर बता सकते हैं कि इस चुनाव में हमारा एनडीए बिल्कुल आप
4: विल कंटिन्यू टू टेल यू व्हाट द पॉलिटिशियंस आर सेइंग एंड व्हाट द पुलिस ऑफिशियल्स विल ऑफिशियली कंफर्म। वी विल बी ट्रैकिंग दिस बिग स्टोरी फ्रॉम बिहार। आई एम हियरिंग टू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू। थैंक यू।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: बहुत ही
1: करती
0: दुखद घटना है। हम लोग को तो बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई, लेकिन सरकार को कोई शर्म और लाज नहीं रही है। आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो हैं अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है।
1: 10th क्लास का बच्चा और बेटी अगर स्कूटी से जा रही है तो बिहार में भाजपा की सरकार में आप देखिए कितना दहशतगर्द है, वहाँ कैसा जुल्म किया जा रहा है, कैसा टॉर्चर किया जा रहा है बच्चियों के साथ, देख सकते हैं आप, खून खौल जाएगा। मैं तो देखा वीडियो, क्या सरकार है, क्या हो रहा है बिहार में। बहुत बोलते थे जंगल राज, हमको तो लगता कि हैवानियत का राज हो गया बिहार में। भाजपा सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री आपसे नहीं संभलेगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आपके नाम। आइए झारखंड, हम लोग कितना पीस है, देखिए कैसे चलाया जाता है राज्य, ये सीखे हमारे मुख्यमंत्री जी से।

0: जिसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है, ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशार तो हुशार विद्यार्थी होता तो आत्मा हो, वो पढ़ा लिखा लड़का था, एडवांस एडवांस क्रैक करना मामूली बात नहीं है। हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए, उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, कुछ भी गलत बात करके ये मैटर को डिस्प्यूट कर रहे हैं, इसकी न्यायिक उसकी चौक उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती
1: है। सर, आखिरी बार जब आपके बेटे ने आपसे बात की थी तो क्या आरोप लगाए थे उन्होंने, कुछ बताया था कि कितनी तकलीफ में है, उसको क्या कुछ होता है,
0: उसको पीड़ित करा रहा, पीड़ित हो रहा है। मैंने उसको समझाया कि बेटा आईआईटी का या थोड़ा सहन कर ले, इसके बाद तेरी पूरी जिंदगी अच्छी है करके मैंने ये करा, यही मेरी गलती हो गई।
1: क्या बताया था लड़के ने आपको?
0: उसको इसमें लिखा है सर, सब सब अभी बताया ना सर, सब लिखा है अभी बताया ना सर।
2: मैम मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, 1 मिनट आप जब शांत रहेंगे तभी मैं मेरा ओपिनियन दूंगी।
1: ओपिनियन मत दीजिए, जो हुआ है
2: जो हुआ है वो बताऊंगी। आप शांत रहिए, आप प्रेशर डाल रहे। मैं साहिल की मदर सोनाली वाकोड़े एज अ टीचर हूँ, मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। मैं आपको सभी से यही गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के आपके पैर पड़ के जो गुजारिश करती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है, और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर। अभी आपके भी, आपके भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छे प्रशासन में जाते हैं। एक मिनट सर, आई वांट टू टॉक। आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
3: काउंसलिंग सेशन लेके गए थे क्या?
0: वो सब कई चौकशी होने के बाद ही पता चला।
2: चौकशी
0: उसको अरेस्ट करिए
2: एज अ टीचर,
0: उसको अरेस्ट करिए
2: एज अ मदर एंड फादर। आई ट्रस्ट क्राइम ब्रांच, माझा मेरा प्रशासन पर पूरा विश्वास है, संविधान पर भी विश्वास है, मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा। एफ आई आर में अभी मेरे पति ने जो बताया वही सच है, पूरा बताया।
4: साहिल से बात कब हुई थी?
2: हम जब 13 तारीख को उसको मिलने गए थे उसके रूम के अंदर उन्होंने बताया कि पापा मुझे थोड़ा टॉर्चर हो रहा है, वो जो महार जात है उसे मुझे शिविका दे रहे हैं। हाँ, जातीय तो हमने उसे समझाया कैसा चलता रहता है, और हमने उसको मॉरल सपोर्ट भी किया। यह हमारी गलती हो गई, यह अच्छा काम नहीं है कोई भी प्रश्न, लेकिन बच्चे की मेंटेलिटी उसको कुछ मालूम नहीं रहता ना। 19 साल का बच्चा था, 20 रनिंग चालू थी, वो क्या समझ सकता था। मुझे आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरे बच्चों को प्लीज न्याय दे। अभी मेरी मेंटेलिटी नहीं है सर, नो कमेंट। मैं तो यहाँ से
0: हाथ विनंती छड़ा लगावा माझी कळकळीची विनंती आहे, त्यांना त्वरित अरेस्ट व्हावं माझी कळकळीची विनंती आहे सर।
5: वो हिंदी में बता
2: दीजिए।
0: एफआईआर में लिखा वाला है, एफआईआर की कॉपी आपको मैं दूंगा। एफआईआर की इसमें जो है वो होने को होना, मैं ज्यादा कुछ नहीं
3: देंगे। आपके बेटे को किस तरह से टॉर्चर करते थे दुल्ला, आपके बेटे को किस तरह से टॉर्चर करते थे, बस वो बता दीजिए। आपने अभी मराठी में जो मेंशन किया था,
0: ऊपर जाति का है, मैं ऊपर जाति का हूँ, आप नीचे जाति को, आपको मैं कौन से भी गलत इसमें फंसा के निकाल लूंगा, ऐसे करके वो टॉर्चर करके उसको ये कर रहा था, ऐसा मेरा आरोप है।
3: आपके बेटे के साथ ये कितने दिनों से चल रहा था?
0: ये 3 महीने से चल रहा था, जब से चालू हो गया है।
3: आराम से

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

वो संगमरमर का ताजमहल नेहरू जी को कितना अच्छा लगता है, मगर वही बोलते हैं मंदिरों में संगमरमर या मार्बल इतना ज्यादा यूज होता है कि मुझे गुसलखाने की याद आती है, बाथरूम की याद आ रही है। इसका सोर्स है सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 74 इन द ओरिजिनल एडिशन पेज नंबर 181। आप फितरत देखिए, मंदिर में डिप्रेशन, ताजमहल को देख के वाह क्या सुंदर, और मंदिरों के संगमरमर पे बाथरूम याद आता है। यह है असली फितरत। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि संगमरमर के पत्थर से चाहे जितनी अच्छी भी मूर्तियां बना दी जाएं, मगर मुझे उसमें से गुसल खाना ही याद आता है, बनारस के लोगों को भले ही बुरा लग रहा हो।

0: हामिद अंसारी साहब ने एक किताब को कोट किया है जो 2019 में लिखी गई है, और बकौल उनके नेहरू जी ये कह रहे हैं कि उनके लिए कम्युनिज्म उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू राष्ट्रवाद। इस बात के लिए मैं हामिद अंसारी जी को बधाई देना चाहूंगा। कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। कम्युनिज्म यानी वामपंथ एक खतरा था, नेहरू ये मानते थे और नेहरू का संदर्भ वो लेके आए, और इससे यह भी साफ हो गया है कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बातों में जो कुछ दिखाई पड़ता है, इसकी कहानी खानदानी है, ये कोई अकेले अभी की बात नहीं है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: थ्री चीफ मिनिस्टर्स, थ्री पावरफुल वॉइसेस फ्रॉम द साउथ, सी जोसेफ विजय, डी के शिव कुमार।
4: So in politics, there will be a lot of adjustment, new opportunities, issues. We'll have to digest all those things.
3: V.D. Satishan.
5: You're the people's choice.
6: I'm the party's choice. Party selected me.
3: When they chose to speak first, they chose India Today, the channel where leaders speak.

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: यार लोन भूल गया मैरी
5: जस्ट अ गुड बैंक ना
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक
6: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
7: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cool.

वो संगमरमर का ताजमहल नेहरू जी को कितना अच्छा लगता है, मगर वही बोलते हैं मंदिरों में संगमरमर या मार्बल इतना ज्यादा यूज होता है कि मुझे गुसलखाने की याद आती है, बाथरूम की याद आ रही है। इसका सोर्स है सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 74 इन द ओरिजिनल एडिशन पेज नंबर 181। आप फितरत देखिए, मंदिर में डिप्रेशन, ताजमहल को देख के वाह क्या सुंदर, और मंदिरों के संगमरमर पे बाथरूम याद आता है। यह है असली फितरत। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि संगमरमर के पत्थर से चाहे जितनी अच्छी भी मूर्तियां बना दी जाएं, मगर मुझे उसमें से गुसल खाना ही याद आता है, बनारस के लोगों को भले ही बुरा लग रहा हो।

0: आत्महत्या को उत्पीड़न के तरह से मामला दर्ज हुआ है, तो उसके लिए जो सबूत चाहिए थे, सबूत है ना सर, मैंने अभी पेश करे वाले हैं सबूत। हाँ
1: क्या सबूत है, क्या सबूत है मुझे बताइए, एक सबूत जो ये दिखाता है कि आपके बेटे के खिलाफ जातिवाद रिमार्क्स किए गए या जाति की वजह से उसको टारगेट किया गया, क्या सबूत है?
0: उसने मेरे मेरे को बोला था, और सभी कोई एक स्टूडेंट है उसका वीडियो देख लीजिए आप, वो जब उनकी 28 मांगे जब पूरी करने के लिए केदारे साहब आए थे, हाँ, तो उन्होंने, वो लड़की जोर जोर से बात कर रही कि यहाँ कॉस्टिज्म का जातिवाद जातिवाद हो रहा है, तो वो डायरेक्टर कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो उसको कोई बात नहीं कर रहा, वो तो पूरा पूरा
1: नहीं,
0: है ना उसका।
1: साहिल
0: हाँ
1: ने कभी आपको कहा था इतने महीनों में जब वो आईआईटी में था कि मेरे खिलाफ भेदभाव हो रहा था, उन्होंने आपको कभी कहा था?
0: भेदभाव हो
1: उसका
0: रहा था,
1: कोई
0: मेरे को
1: व्हाट्सएप
0: बोला
1: है,
0: था, मैंने सिर्फ
1: कोई
0: नजरअंदाज
1: व्हाट्सएप?
0: करा कि ये बेटा जाने दो, ये ऐसे आघात आप कर आते ही रहेंगे, हाँ, ये 2 साल में आपका जिंदगी बहुत आसान बनेगा, 2 साल में आपको पैकेज वगैरह अच्छा चलेगा, हमने नजरअंदाज कर दिया सर, उसको समझाया प्यार से, जान दो बेटा विरोधक मिलते रहेंगे। हाँ
1: पर यह कहा जा रहा है कि वो एग्जामिनेशन में कॉपिंग कॉपिंग करते हुए पकड़ा गया, ये कहा जा रहा है कि पकड़ा गया वो कॉपिंग करते हुए।
0: कॉपी करे करे पकड़ा गया, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सामने लाने को ना, वो बात कर रहे पहले का कॉपी पकड़ लिया, बाद में बोल रहे माफी मांग रहे, ये क्या हो रहा है सर जी। हाँ
1: नहीं, मैं कांबले जी, क्या आप लोग ने तय किया कि ये SC ST अट्रोसिटीज एक्ट का केस बनता है? आप इंक्वायरी होने दीजिए, उसके बाद होना चाहिए ना, आप तुरंत चाहते हैं कांबले जी?
0: इंक्वायरी के जब अरेस्ट करना है तो कोई सबूत चाहिए, सबूत है ना सर, और ये
1: क्या सबूत
0: जो
1: है?
0: सबूत,
2: सर देर आर वीडियोज
1: हाँ
2: सर्कुलेटेड
1: यस
2: ऑन द ट्विटर एज वेल एज ऑन द सोशल मीडिया, द स्टूडेंट्स कमिंग फॉरवर्ड वॉलेंटरीली एंड दे आर गिविंग देयर स्टेटमेंट्स ऑन ऑन ऑन द सोशल मीडिया दैट देर आर द इंसिडेंट्स वेयर टेकन प्लेस इन द कैंपस वेयर मिस्टर डुल्ला हैज यूज द कास्टिस रिमार्क अगेंस्ट द स्टूडेंट्स एंड दे ऑल्सो कन्फर्मिंग विद दिस थिंग्स दैट दे हैव यूज द कास्टिस रिमार्क्स विद साहिल ऑल्सो.
1: No, you have witnesses. You have witnesses who will say that. आपके पास
2: There
1: witness
2: are
1: है?
2: the
1: You
2: some
1: have
2: videos on
1: witnesses.
2: social media. There are the some videos on social media on the very first day of the protest. There are the some videos circulated on the social media. The protesters, student protesters of the IIT, they themselves have stated that they are on the camera, and that is the reason Mr. Wakade is taking the ground that there are the these students are the witnesses. There
1: So
2: may
1: you.
2: be something caustic remarks has been used by the Professor Dola in the public view.
1: You are saying that there are student remarks, but Wakode ji, आप बिल्कुल आप अपने बात पर बिल्कुल अड़िग है, क्योंकि फैकल्टी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेसर बाकी प्रोफेसर कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये आपके बेटे
0: वीडियो सर
1: को
0: जी,
1: टारगेट किया गया
0: वीडियो
1: क्योंकि वो दलित
0: आप
1: समाज से
0: क्या
1: आता है।
0: करें, आपने वीडियो देखा क्या सर, वो केदारे सर जब आए थे, केदारे सर जब आए थे मांगे पूरे करने के लिए, तो वो लड़की जोर जोर से बात कर रही है यहाँ कॉस्टिज्म हो रहा है जातिवाद हो रहा है, वो वीडियो क्या है ये आप देख लीजिए ना सर, देखने के बाद आपको पता चलेगा सर ये क्या चल रहा है। और दूसरी बात, उसको पहले कॉपी पकड़ी बोलते हैं, बाद में माफीनामा बोल रहे हैं, और एक टीचर जो 2009 से एक ही पद पर कायम है इतने साल से, नियम के अनुसार 3 साल में उसकी बदली होने को होना, तबादला होना को होना सर, एक पद पर इसको कैसे रख रहे इतने साल के लिए, उनके उनका हौसला बढ़ रहा है सर।
2: दिस इज द फोर्थ फोर्थ सुसाइड इन द आईआईटी बॉम्बे. इन लास्ट 10 years देर आर 15 सुसाइड्स इन द आईआईटी बॉम्बे सर, एंड दिस इज वेरी सीरियस एंड देर आर द डेटास एंड इवन द जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. आई कैन गिव दैट जजमेंट डिटेल्स ऑल्सो वेयर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवेन अ गाइडलाइंस टू दिस इंस्टीट्यूट दैट वंस एनी सुसाइड इज टेकन प्लेस एनी इंस्टीट्यूट दे द इंस्टीट्यूट हैज अ ड्यूटी बाउंड टू गो एंड फाइल एन FIR. इन अवर केस देर आर नो FIR हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर लास्ट 12 आवर्स वेन द पेरेंट्स केम फ्रॉम द रूरल एरिया यवतमाल इन द बॉम्बे एंड दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड रिक्वेस्टेड टू फाइल एन FIR इन दैट थिंग दे आर कंटेम्प्टिंग टू दैट सुप्रीम

0: good judgment.
1: Okay, I'm going to leave it there. I've heard both of you. As I said, my thoughts and prayers are with young Sahil. A young life has been taken away tragically. Vakhode ji, hamari samvedanshilta aapke saath, aapke parivar ke saath, aur jo bhi ho, kanun ke daire mein hona chahiye.
2: जो आत्महत्या
1: इंक्वायरी होने दीजिए, इंक्वायरी होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा.
2: इंक्वायरी का भाग वो क्राइम ब्रांच कर रही है, उनका मेरे से कुछ ये उनकी इंक्वायरी अच्छी तरह है, मैं उनके सपोर्ट में हूँ सर. लेकिन जो आत्महत्या हुए उनमें उसमें से 60% एससी शेड्यूल कास्ट के लड़के की हुई है. आप थोड़ा पिछले पिछले इसमें जाइए ना सर.
1: सर मैं क्या चलेगा सर, मैं गया हूँ.
2: आत्महत्या हुई है 10 में से पिछले रिकॉर्ड के अनुसार से
1: सर. जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के भी आत्महत्या हुई है, दलितों की भी हुई है, ओबीसी की भी हुई है. जो भी हो, स्टूडेंट की जान गई है और मुझे लगता है एक स्पष्ट इंक्वायरी होनी चाहिए. पर आप हमारे शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच कामले जी, माखोड़े जी, थैंक यू, धन्यवाद. लेट्स टेक अ ब्रेक. व्हेन वी रिटर्न I am turning to my other big story, the Tata story. Abhishek Manu Singhvi is likely to appear for Noel Tata. Why? That's on the other side. What's the defense of the Tata Trust? You're watching the news today. News without the noise.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैडी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: एवरी स्टोरी फाइंड्स अ प्लेस एवरी वॉइस गेट्स अ प्लेटफॉर्म एवरी साइड हैज इट्स से Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.

0: state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Crime Team on India Today. India's only democratic newsroom.

0: इसमें जाइए ना सर,
1: सर
0: आपको
1: मैं
0: पता
1: गया हूँ, सर मैं गया हूँ
0: आत्महत्या हुई है 10 में से
1: जी सर,
0: पिछले रिकॉर्ड के अनुसार से।
1: सर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के भी आत्महत्या हुई है, दलितों की भी हुई है, ओबीसी की भी हुई है, जो भी हो स्टूडेंट की जान गई है और मुझे लगता है एक स्पष्ट इंक्वायरी होनी चाहिए। पर आप हमारे शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कामले जी, माखोड़े जी, थैंक यू, धन्यवाद। लेट्स टेक अ ब्रेक, व्हेन वी रिटर्न आई एम टर्निंग टू माय अदर बिग स्टोरी, द टाटा स्टोरी। अभिषेक मनु सिंघवी इज लाइकली टू अपियर फॉर नोएल टाटा, व्हाई? दैट्स ऑन द अदर साइड, व्हाट्स द डिफेंस ऑफ द टाटा ट्रस्ट। यू आर वॉचिंग द न्यूज टुडे, न्यूज विदाउट द नॉइज।